0: का द बेस्ट का.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बेस्ट कैफे ग्रीन 6-in-1 हर्बल कॉफी मिक्स. मुराना हेल्थी बा.
2: ओके सैटरडे.
3: ओके सैटरडे.
4: ओके सैटरडे.
5: ओके एफ.